0: వింటున్నారు వివిధ భారతి ఎఫ్ఎం 101.3.
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल.
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री.

0: అంటే ఎఫ్ఎంలో మీరు ఇంతవరకు చిత్రమంజరి కార్యక్రమంలో సినిమా పాటలు విన్నారు. సమయం 6 గంటలు కావస్తుంది. మరికొద్ది క్షణాల్లో వినండి హిందీలో వార్తా ప్రసారం ఢిల్లీ కేంద్రం నుంచి.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं है बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है और पिछले 2 दिनों की चर्चाओं ने इस विश्वास को और मजबूत किया है. श्री मोदी ने आज लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता निर्माण पर सत्र में आशा प्रकट की कि ब्रिक्स सम्मेलन में स्वीकार किया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा.
2: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा. हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा. हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे.
1: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स अपने तीसरे दशक में प्रवेश करने जा रहा है और दुनिया अब इस समूह से ठोस परिणामों की आशा करती है. प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी. उन्होंने नई दिल्ली सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सभी ब्रिक्स देशों, सहयोगी देशों और उनकी टीमों की सराहना की. इससे पहले सम्मेलन के खुले सत्र में प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटे उद्यमियों को ज्ञान, वित्त और नए बाजारों से जोड़ने के लिए ब्रिक्स एमएसएमई सहयोग पोर्टल स्थापित करने की पहल का प्रस्ताव रखा गया है. प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभों को ग्लोबल साउथ की जरूरतों के अनुसार ढाला और उपलब्ध कराया जाना चाहिए.
2: कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है क्योंकि ब्रिक्स में उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके अनुभव का सम्मान होता है और सॉल्यूशन उनके लिए ही नहीं उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं. ब्रिक्स की शक्ति हमारी डाइवर्सिटी और कोऑपरेशन में है. वी मे बी रूटेड इन डिफरेंट रियलिटीज बट टुगेदर वी राइज थ्रू कोऑपरेशन एंड ब्लॉसम फॉर ह्यूमैनिटी.
1: प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिक्स सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की. श्री मोदी ने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्त तोकायेव के साथ द्विपक्षीय बैठक में आपसी संबंधों में प्रगति की समीक्षा की. प्रधानमंत्री ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता असीसी के साथ भी बैठक की. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान क्षेत्रीय घटनाक्रम और भारत मिस्र की साझेदारी सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई. इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ मुलाकात में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश कई क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करना जारी रखेंगे. श्री मोदी ने फिलीपींस के राष्ट्रपति आर मार्कोस जूनियर के साथ भी बातचीत की. उन्होंने मौजूदा आसियान अध्यक्ष के तौर पर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में फिलीपींस की भागीदारी का स्वागत किया. श्री मोदी दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपति तथा नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति के साथ और द्विपक्षीय बैठकें करने वाले हैं. गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग से ये सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरो का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और विनिर्माण श्रृंखला पूरी तरह से भारतीय हाथों में रहे. उन्होंने मुंबई में 52वें भारत रत्न और आभूषण पुरस्कार समारोह में कहा कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरो से इसके व्यापार का स्वरूप बदल रहा है. केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि महामारी से निपटने की तैयारियों में भारत एक दशक पहले की स्थिति से बहुत आगे निकल चुका है. देश ने ऐसी जीवंत जैव अर्थव्यवस्था, टीका विकसित करने की बेहतर क्षमता और वैज्ञानिक पारिस्थितिकी तंत्र तैयार किया है जिनसे भविष्य में महामारियों से निपटने की वैश्विक तैयारियों में योगदान दिया जा सकता है. उन्होंने ये बात आज नई दिल्ली में महामारी के लिए तैयारी नवाचार गठबंधन के बोर्ड और निवेशक परिषद के लिए आयोजित एक समारोह में कही. चीन के मोकी में भारतीय महिला और पुरुष टीम ने जूनियर एशिया कप का खिताब जीत लिया है. महिला वर्ग के फाइनल में भारत ने चीन को 1-0 से हराया जबकि पुरुष वर्ग फाइनल में भारत ने कोरिया को 4

0: एका अनन्यथा सिद्धा समाधान पारिस्थितिकी प्रणाली वर्तते इति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नवदिल्ली घोषणा पत्रम ब्रिक्स देशानां भावि सहयोगस्य अबाधित मार्गदर्शकम् इति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गृहमंत्रिणः अमित शाहस्य आह्वानम् प्रयोगशाला निर्मित वज्राणां समग्र उत्पादन श्रृंखला भारतस्य प्रभुत्वे एव अवचिन्ना तिष्ठेत्। अपि च दुबई नगरे निवर्त्यमानायाः T20 एशिया चषक प्रतिस्पर्धायाः चरमे सोपाने अद्य भारतम् श्रीलंका दलेन सह पक्ष प्रतिपक्ष भावेन सम्मुखी भविष्यति। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य अवोचत् यत् ब्रिक्स न केवलं राष्ट्राणां समूहः अपितु समाधानानां किंचन पारिस्थितिकी तंत्रमस्ति। विगत दिनद्वयस्य गहन चर्चाभिः अयं दृढ विश्वासः अधिकः सुदृढः जातः। सुदृढता, नवाचारः, सहकारः, सतत विकासश्च इत्यादिषु विषयेषु आयोजिते ब्रिक्स सत्रे स्वकीय समापनाभिभाषणे श्रीमोदी आशां प्राकटयत् यत् शिखर सम्मेलने अंगीकृतं नवदिल्ली घोषणापत्रं प्रकाशित दृष्टिकोणेन भविष्यत् सहकाराय च स्पष्टां दिशं निर्दिशेत्। तेन सर्वाणि परिणामात्मक लक्ष्याणि समयबद्ध कार्येषु परिणामयितुं अन्त्योदय प्रभावं जनयितुं च आवश्यकता प्रतिपादिता। सः प्रत्यपादयत् यत् ब्रिक्स प्रारूपं केवलं अभिलेखीकरणं विहाय वास्तविक जीवने प्रत्यक्ष प्रभावं उत्पादयितुं सदस्य राष्ट्राणि परस्परं मिलित्वा कार्यं करिष्यन्ति।
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
0: ब्रिक्स संघटनम स्वकीये तृतीये दशके प्रवेष्टुं सज्जमस्ति इति निरूपयता श्रीमोदिना दृढतया प्रतिपादितं यत् संसारः अधुना एतस्मात् समूहात् केवलं विचारान् प्रतिश्रुतिः न अपितु मूर्त परिणामान् अपेक्षते। सः दृढ विश्वासं प्राकटयत् यत् ब्रिक्स संघटनं सामूहिक प्रयासैः एतासु अपेक्षासु अवश्यमेव सत्यं सिद्धं भविष्यति। प्रधानमन्त्रिणा आगामी अध्यक्षत्वेन चीन देशाय शुभाशयाः समर्पिताः। तेन नवदिल्ली शिखर सम्मेलनस्य साफल्य सम्पादनाय सर्वाणि ब्रिक्स राष्ट्राणि सहभागी देशाः तेषां प्रतिनिधि मण्डलानि च प्रशंसितानि। प्रधानमन्त्रिणा तेषां सक्रिय सहभागितायै बहुमूल्य योगदानाय च कृतज्ञता ज्ञापिता। सः अवोचत् यत् तेषां महत्वपूर्णैः विचारैः परामर्शैश्च सहकाराय विस्तारः गाम्भीर्यं च प्रदत्तम्। अस्मात् प्राग् नवदिल्ल्याः भारतमण्डपे ब्रिक्स शिखर सम्मेलनस्य सत्रं सम्बोधयता प्रधानमन्त्रिणा मोदिना प्रतिपादितं यद् वैश्विक संक्रमणेन जलवायु आपद्भिः आपूर्ति श्रृंखलायाः विघ्नैश्च स्पष्टीभूतम् यत् अद्यत्वे परस्पर संयुक्ते जगति कोऽपि संकटः एतस्मिन् एकस्मिन्नेव क्षेत्रे सीमितो न भवति। तेन विज्ञापितं यत् संक्रामक रोगाणां प्रतिषेधाय ब्रिक्स एकीकृत पूर्व संचेतना प्रणाल्याः विषये सर्वसम्मतिः संजाता। श्रीमोदिना सावधानता प्रकटिता यत् प्रौद्योगिक्याः अथ महत्वपूर्ण खनिजानां शस्त्रीकरणं प्रगतेः मार्गे महती बाधा भवितुमर्हति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ आन् एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। अद्य नवदेहल्याः भारतमण्डपं प्रांगणे निवर्त्यमानस्य 18 ब्रिक्स शिखरसम्मेलनस्यावसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी

0: A-grade artist of All India Radio. He is a member of ICCR's reference panel of artists.
1: आज के कार्यक्रम में सुमित सिंह पदम अपने वादन की शुरुआत राग रागेश्वरी से कर रहे हैं, जिसमें आलाप, जोड़ आलाप और जोड़ झाला के बाद विलंबत गत तीन ताल में, मध्य लय गत मत ताल में और अंत में तीन ताल में द्रुत गत पेश की जाएगी।
0: In tonight's concert, Sumit Singh Padam begins his recital with Rag Rageshwari, wherein

0: ये था राग रागेश्वरी। सुमित सिंह पदम अब प्रस्तुत करेंगे राग तेज। आलाप के बाद तीन ताल में मध्य, लय और द्रुतगत प्रस्तुत की जाएगी।
1: That was Rag Rageshwari. Sumit Singh Padam will now present Rag Des. Alap is followed by Madhyalaya Gat and Drutgat in Teen Taal.

0: यह था सुमित सिंह पदम द्वारा प्रस्तुत राग देस। तबले पर उनके साथ संगत की थी श्री मधुरेश भट्ट ने। यह कार्यक्रम आकाशवाणी जालंधर की प्रस्तुति थी।
1: That was राग देस presented by सुमित सिंह पदम। He was accompanied on tabla by मधुरेश भट्ट। This program was a presentation

0: ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। अब से कुछ ही देर बाद समाचार होंगे, कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया कि ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे, सहयोग प्रेरणा हो और प्रगति मानवता के हित में योगदान दे। दो दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है।
2: आप सबकी मौजूदगी ब्रिक्स की बढ़ती रेलेवेंस, ओपननेस और इंक्लूसिवनेस का प्रमाण है। पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है।
1: श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
2: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और वादों की नहीं बल्कि ठोस परिणामों की उम्मीद करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह तक ही सीमित नहीं होने चाहिए। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन के दूसरे और आखिरी दिन ब्रिक्स सहयोगी देशों के नेताओं का स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में आज संपन्न ब्रिक्स
3: वेरी गुड एफर्ट इन द डीप स्टॉपिंग द बाउंड्री एंड थ्रोइंग द बॉल टुवर्ड्स द विकेट कीपर ऋचा घोष।
1: से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले तीन दिन में श्री मोदी ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 बैठकें की। उन्होंने दुनिया के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कजाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। प्रधानमंत्री ने बुरुंडी के राष्ट्रपति, नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति के साथ भी बैठक की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और विनिर्माण श्रृंखला पूरी तरह से भारतीय हाथों में रहे। उन्होंने आज मुंबई में 52वें भारत रत्न और आभूषण पुरस्कार समारोह में कहा कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों से इसके व्यापार का स्वरूप बदल रहा है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश में कई बड़े परिवर्तन किए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के सहयोगी दल और कई स्वयंसेवी संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक

0: wickets down 103. India were well beyond 100. In fact, they were around 161 at this point of time. But cut and then a thickish edge outside the off stump on the next delivery by Shefali Verma. Just a single then as Sri Charni from the short third man runs to her right and picks up that ball. Sri Lanka at the moment 104 for 7 after 17 overs.
1: तो आखिरी तीन ओवर बाकी हैं इस मुकाबले में. 80 रन अब भी चाहिए श्रीलंका को और नुथियांगना जो कि विकेट कीपर हैं टीम की वो अब सुगंधी कुमारी के साथ बैटिंग करने आई हैं. 2 रन नुथियांगना के और इसके अलावा 1 रन सुगंधिका कुमारी का. श्री चरणी ने आज 3 विकेट लिए हैं. अगर आप भारतीय गेंदबाजों का विश्लेषण देखें कि किसने किस तरह की गेंदबाजी की है तो बिल्कुल आपको साफ लगेगा कि श्री चरणी सबसे कामयाब बोलर्स में उनका शुमार है और बहुत बढ़िया गेंदबाजी की उन्होंने. क्रांति गौर ने शुरुआत की, दो ओवर में 1 विकेट लिया. नंदिनी शर्मा ने 3 ओवर गेंदबाजी की, 17 रन दिए, कोई विकेट नहीं मिला. श्री चरणी का ये आखिरी ओवर होना चाहिए. 3 ओवर्स इससे पहले उन्होंने किए हैं, ये आखिरी ओवर होगा उनका. 20 रन दिए हैं और 3 विकेट अपने नाम किए हैं. तो सबसे कामयाब गेंदबाज आज की श्री चरणी. दोनों डॉट बॉल इससे पहले और एक बार फिर खेलना चाहती थी लेकिन गेंद उनके पैड पर जाकर के लगी. उछाल था गेंद में और इसलिए रन तो मिला नहीं लेकिन कोई नुकसान भी नहीं हुआ श्रीलंका को. काफी उछाल था गेंद पर, जहां पर गेंद टप्पा खाई वहां बल्ला ले जाकर के स्वीप शॉट खेलना चाहती थी. पूरी तरह से मिस किया गेंद की टाइमिंग को और इस बार फिर रिवर्स खेलने का प्रयास. कुछ भी समझ नहीं पा रही है श्रीलंकन बैटर्स की किस तरह से खेलना श्री चरणी को. श्री चरणी की लगातार 4 डॉट बॉल हैं. अब सुगंधिका जिन्होंने 6 गेंदों पर 1 रन बनाए हैं, जाहिर है कि एक फ्रस्ट्रेशन सर चढ़ करके उनके बोल रहा होगा. आखिरी 2 गेंदों पर श्री चरणी क्या करती हैं. पिछली 30 गेंदों में 25 रन बने हैं श्रीलंका के और 4 विकेट गवा दिए हैं श्रीलंका ने. इस बार फ्लाइटेड थी और गेंद को हवा में खेला है और हाथों में जाएगा बिल्कुल. 1 और विकेट श्री चरणी का, ये 4th विकेट. यानी कि विकेट्स लेने के मामले में श्री चरणी अब नंबर 2 पर पहुंच गई है. बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन. 8 विकेट इस मुकाबले से पहले उनके थे, 4 विकेट आज उन्होंने लिए. चमरी अट्टापट्टू के भी 12 विकेट हैं, इनके भी 12 विकेट हैं और इस गेंद को घुमा दिया था लेकिन

0: भारत बना है आठवीं बार एशिया कप चैंपियन। भारतीय स्पिनर्स की फिरकियों ने श्रीलंका को ऑल आउट किया है 111 के स्कोर पर, और हम हाजिर हैं कौन बनेगा प्लेयर लेकर। मैं हूं मुदिता और मेरे साथ है मेरे को-होस्ट दर्पण तिखिया।
1: जी हाँ, सभी भारतीय प्रशंसकों को बहुत बहुत बधाई। भारत आठवीं बार एशिया का चैंपियन बना है महिला क्रिकेट में, T20 एशिया कप का खिताब अपने नाम करने के बाद, और हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारत ने यह मैच जीता है। और भारतीय स्पोर्ट्स के लिए, इंडियन स्पोर्ट्स के लिए आज का दिन शानदार रहा है। एक तरफ चाइना से खबर आई कि हॉकी जूनियर एशिया कप में भारत की महिला टीम ने चीन को फाइनल में 1-0 से हराया, भारत की पुरुष टीम ने 4-1 से दक्षिण कोरिया को मात दी। तो वहां दो एशिया कप के टाइटल भारत ने अपने नाम किए, यहां महिला क्रिकेट में अपने नाम किया। तो वहीं दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान को पहले T20 में मात दी। और वहीं एक खबर मेक्सिको से भी आ रही है, जहां पर आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल्स में धीरज बोमा देवरा मेंस रिकर्व आर्चरी में फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय आर्चर बन चुके हैं, यानी वहां से भी सिल्वर मेडल आना तो कंफर्म है। थोड़ी देर में पुष्टि होगी कि गोल्ड आएगा कि नहीं आएगा। तो ओवरऑल इट हैज बीन अ टेरिफिक डे फॉर इंडियन स्पोर्ट्स, बट हेयर वी आर टू सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ द इंडियन वुमेन्स टीम। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक पैनल है, हमारे साथ फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर लतिका कुमारी है, जो शायद इन इमोशंस को बहुत बेहतर से जानती है। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा लगता है बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में जीत पाना। लतिका, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत।
2: थैंक यू सो मच।
1: और साथ में हमारे साथ उत्तरा गणेशन है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, जिन्होंने भारतीय क्रिकेट को एक लंबे अरसे से बड़े करीब से देखा है। उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या महत्व है इस जीत के। वेलकम उत्तरा।
2: धन्यवाद दर्पण।
1: तो लतिका, आपसे ही शुरुआत करते हैं। एज अ प्लेयर, जब आप इन विजुअल्स को देखते हैं, टीम को सेलिब्रेट करते हुए, लंबे टूर्नामेंट में जीत हासिल करते हुए, अनडिफीटेड रही है भारतीय टीम, कैसा महसूस करता है खिलाड़ी?
2: देखिए, सबसे पहले जिस चीज़ के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, महीनों के कैंप्स लगाते हैं, प्लानिंग्स करते हैं, यंगस्टर्स को लेकर आते हैं टीम, सीनियर प्लेयर्स होते हैं, तो ये एक कह सकते हैं कि काफ़ी लंबो भरा है ये जो रास्ता रहा है, उसकी जर्नी जो आज एक कप के साथ फिनिश होती है, तो इस चीज़ की फीलिंग एक्सप्रेस करना काफ़ी मुश्किल है। और इसी चीज़ के लिए तो हम लोग ग्राउंड पे उतरते हैं कि जब हम अपना 100% दे रहे हैं, उस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो इस तरह की ट्रॉफीज़ की ना अब आदत लगा लेनी चाहिए, क्योंकि हरमन जिस तरह का काम कर रही हैं, जिस तरह की कप्तानी वो कर रही हैं, तो उनके साथ ये जो सफ़र है, यंगस्टर्स भी हैं और एक्सपीरियंस प्लेयर भी हैं स्मृति जैसे, तो अच्छा लगता है जब एक ट्रॉफी घर पर आती है।
0: जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है जब एक ट्रॉफी घर पर आती है। उत्तरा, 10वां एडिशन है ये एशिया कप का, पहले एडिशन में भी श्रीलंका और भारत का मुकाबला हुआ था, भारत हर बार फाइनल में पहुंचा है और ये 8वीं बार ट्रॉफी उठाने जा रहा है भारत, इससे ज़्यादा और क्या सबूत होगा भारत के डोमिनेंस का एशिया में?
3: मुझे लगता है कि अगर, हालांकि उम्मीद थी भारत के जीतने की ही, पर जितना बड़ा गैप है इस वक्त भारतीय क्रिकेट और बाकी एशियन टीम्स के बीच में, महिला और पुरुष क्रिकेट दोनों में, बट महिलाओं में और ज़्यादा है, तो मुझे लगता है कि अब भारत को अपने आप को एशिया के हिसाब से सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप जीतने लगते हो, जब आपको आदत हो जाती है, तो आपको अपने टारगेट्स, अपने सपने बड़े करने चाहिए। और मुझे लगता है कि कॉन्टिनेंट अब आप प्रूव कर चुके हो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बहुत बार प्रूव कर चुके हो कि इस कॉन्टिनेंट में, एशिया में आपसे बेहतर कोई नहीं है, आपके आसपास भी कोई नहीं है। आज इन्होंने फिर से इस चीज़ को प्रूव किया है, और जितने बड़े मार्जिन से ये जीते हैं, T20 जैसे टूर्नामेंट में 70-75 रन से जीतना कोई छोटी चीज़ नहीं होती है, जहाँ पे टोटल ही कई बार टीमों के इतने बनते हैं, उसमें इतने बड़े मार्जिन से जीतना, तो मुझे लगता है अब भारत को अपना

0: सपना और अपनी अपना दृष्टिकोण थोड़ा सा और बड़ा करना चाहिए, थोड़ा सा अपने एम्बिशंस और बड़े करने चाहिए, अपनी अपनी अपना लालच और बड़ा करना चाहिए और विश्व की ओर देखना चाहिए, क्योंकि अगला टारगेट विश्व कप ही होना चाहिए इनका।
1: जी बिल्कुल, 72 रन से भारत ने इस मुकाबले को जीता है। सामने श्रीलंका थी जो कि इस टूर्नामेंट में आज से पहले अपराजित थी और उनको एक तरफा अंदाज में भारत ने हराया है। और अभी भी हमारे पास जो विजुअल्स आ रहे हैं उसमें दिख रहा है कि दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के जो स्टैंड्स हैं वो खाली नहीं हुए हैं, भारतीय प्रशंसक अभी भी बने हुए हैं स्टैंड्स में, क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं उस लम्हे का जिस जब हरमनप्रीत कौर को वो ट्रॉफी दी जाएगी और जश्न मनाया जाएगा भारतीय टीम द्वारा। लेकिन इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। लतिका, उत्तरा ने कहा कि हमें अब और आगे की सोचनी है, उस लिहाज से क्या लगता है कि कौन सी चीजें हैं, कौन से वो पहलू हैं जिन पर भारत को इंप्रूव करने की जरूरत है जो आपने इस टूर्नामेंट में देखे?
0: देखिए, सबसे पहले हमने देखा है कि इस पूरे टूर्नामेंट में जो फील्डिंग की अगर मैं बात करूं, कैचेस की अगर मैं बात करूं, तो वो थोड़ा सा लैक दिखा है, उसमें थोड़ी कमियां ज़रूर नज़र आई हैं। और आई होप के जो कोचेज हैं, मैनेजमेंट हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को देखा होगा और इस पे काम करने के लिए आगे प्लान्स भी ज़रूर बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि एक ये एक चीज़ होती है जो अपने हाथ में रहती है। एक बल्लेबाज किसी भी अच्छी गेंद पर आउट हो सकता है, एक गेंदबाज की किसी भी अच्छी बॉल पर बड़ा हिट लग सकता है, लेकिन फील्डिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको ही एफर्ट करना है, वही एफर्ट जो है वहाँ पर रन बचा सकता है या किसी की बॉलिंग में वो विकेट दिला सकता है। तो जो आज भी हमने देखा है कि काफ़ी आसान से कैच इतने आसानी से छोड़ दिए, आप उस बॉलर से पूछिए जिसने इतनी मेहनत की उस कैच को करवाने के लिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि कोई क्रूशल अगर मैच होगा और वहाँ ये सिचुएशन आती है तो थोड़े आपको कह सकती हूँ मैं कि लेने के देने पड़ सकते हैं। तो ये एक चीज़ होती है जब आप क्रिकेट में कोई भी चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं, तो छोटी से छोटी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है।
2: बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। और आज की इस जीत में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो अभी दिखा हमें वो था भारत के स्पिन अटैक का, लेड बाय दीप्ति शर्मा, नाउ वी हैव चरणी, देन प्रेमा रावत। कैसे देखती हैं उत्तरा इस स्पिन अटैक को आप भारत के, क्या वो और ज़्यादा धारदार होता जा रहा है? और काफ़ी इम्प्रेस किया है उसने इस पूरे टूर्नामेंट में।
0: बिल्कुल, और जिस तरह से एज अ नॉर्मली कहा जाता है कि नो फास्ट बॉलर्स हंट इन पेयर्स, बट ये सिर्फ फास्ट बॉलिंग के लिए नहीं है, आपकी बॉलिंग यूनिट पूरी अटैक व्हेन दे अटैक इन अ पैक तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। और अगर हम इसमें देखें तो हाँ, दीप्ति शर्मा ज़रूर काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं और उन्होंने काफ़ी मैचेस खेले हैं, मैचेस जिताए हैं, काफ़ी विकटें ली हैं, इसमें भी वो टॉप विकेट टेकर बन गई हैं। पर श्रीचरणी और प्रेमा रावत को देख के आपको लगता है कि कम से कम वो लेगेसी आगे कंटिन्यू होने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिस तरह से क्योंकि दोनों यंगस्टर्स हैं, अभी बहुत साल और खेलना है। और हमारी बैटिंग हमेशा से बहुत अच्छी रही है, पर बॉलिंग में कभी ना हमेशा ये रहा है कि शायद एक कम पड़ गया है या एक एंड पे जब हो रही होती है तो दूसरे एंड पे उस तरह से सपोर्ट नहीं मिलता है। तो जब इस तरह से आपके पास तीन चार एक जैसे विश्व स्तरीय स्पिनर्स होते हैं तो वो जो बीच के ओवर होते हैं जिसमें आप एक्चुअली रन्स को चोक कर सकते हैं, वो एक अकेले इंसान का काम नहीं होता है। और इसीलिए मिडिल ऑर्डर में जब आप सदके खेलते हैं, चाहे वो कोई भी फॉर्मेट हो, T20 हो या वनडेयर्स हो, तो वहाँ पे फिर रन ज़्यादा ईजिली आते हैं। जब आपके पास एक की जगह तीन इस तरह के होते हैं जो किसी भी बैटिंग टीम को परेशान कर सकते हैं, बैटिंग साइड को, तो आपको आपके बैटिंग को भी एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस मिलता है कि आप कोई भी टारगेट सेट करें उनके ऊपर प्रेशर कम हो जाता है कि अगर बाय चांस 5-10 रन कम भी बनाए हमने तो हमारे पास ऐसे गेंदबाज हैं, चाहे वो शुरू में तेज गेंदबाज हों या बीच में स्पिन गेंदबाज हों, जो सामने वाली टीम की रन फ्लो को रोक सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, हम जश्न मना रहे हैं भारत के एशिया कप जीतने का, वुमेन्स एशिया कप 2026 का टाइटल भारतीय महिला टीम ने अपने नाम किया है। इस जश्न में आप भी शरीक हो सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं 2342-1085 या 1084 पर, और अगर दिल्ली के बाहर से आप कॉल कर रहे हैं तो 011 लगाना ना भूलें। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार, अपना नाम बताइए और कहां से बात कर रहे हैं ये बताइए। जी, क्या सवाल करना चाहेंगे?

0: जी बिल्कुल बिल्कुल जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई शेफाली वर्मा, और स्मृति मांधना की तो तारीफ होगी ही। मैं चाहूंगा लतिका एक बार फिर आप इनकी बल्लेबाजी का आकलन करें, और साथ के साथ शेफाली जो कि एक छठे बॉलर के तौर पर अब लगातार कंट्रीब्यूशन दे रही है, थोड़ा सा उस पर भी हमें बताएं।
1: बिल्कुल, देखिए ये विश्व कप के बाद से ही ये चीज हमने देखी कि शेफाली के हाथ में गेंद अब लगातार जो है दिखाई देती है जब भी कभी मैच होते हैं, और इस तरह के मोमेंट में आप देखिएगा पावर प्ले के आसपास भी उनको गेंदबाजी कराई जाती है। तो कह सकते हैं कि एक और गेंदबाज यहां तैयार हो रहा है भारतीय टीम के लिए, जो कि विस्फोटक बल्लेबाज भी है, और ओपनिंग बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस पूरे एशिया कप में उन्होंने बल्लेबाजी की है, और अपने खेल का जो तरीका उन्होंने इस एशिया कप में दिखाया है, तो उससे ये पता चलता है कि काफी मेहनत इन्होंने अपने स्किल पे भी की है, और जो इनका माइंडसेट है उस पे भी इन्होंने काफी काम किया है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतरीन प्लेयर जो हैं ये बनकर आई हैं, और इस तरह की जब कोई प्लेयर बनते हैं ना, तो उसके पीछे की जो मेहनत होती है वो प्लेयर ही जानता है कि उसने कितनी मेहनत की
0: वो
1: होगी।
0: थोड़ी सी पीछे की मेहनत आपने देखी है, हम जानते हैं, थोड़ा सा वो बताएं हमारे दर्शकों को।
1: ओके, मैं यही कहूंगी कि शेफाली जब ड्रॉप हुई थी इंडियन टीम से, भारतीय महिला क्रिकेट टीम से, उस टाइम पे उन्होंने यही जो सपना था उनका यही था कि मेरी जगह कोई नहीं ले सकता, और मैं लगातार अपनी जगह वापस लेने के लिए वो मेहनत करती रहूंगी। और उनको जैसे ही वो मौका वर्ल्ड कप के टाइम पे मिला और उन्होंने करके दिखाया, उसके बाद से वो शेफाली वर्मा हमें देखने को मिली है जो उससे पहले कभी हमें देखने को नहीं मिली थी, और हम यही चाहेंगे कि वो भारतीय टीम के लिए लंबे अरसे तक इसी तरह का प्रदर्शन करती रहे।
2: जी बिल्कुल, और शेफाली वर्मा पे हम आगे भी बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन आज हमारे श्रोता भी काफी उत्साहित हैं, तो एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार, अपना नाम बताएं और अपना सवाल पूछें। जी अरविंद जी, अपना सवाल पूछें। आपको भी बहुत बधाई। इसके बारे में हम आपको शायद कुछ समय बाद बता पाएंगे, लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे शेफाली वर्मा की, आपने बात करी, इससे पहले वाले कॉलर दोनों ने डिक्लेयर ही कर दिया था कि शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच देना चाहिए और दीप्ति शर्मा को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दे देना चाहिए। तो उत्तरा और लतिका, मैं आप दोनों से पूछना चाहती हूँ कि कौन होगा आपका प्लेयर ऑफ द मैच और देन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट?
3: बहुत मुश्किल है, पर प्लेयर ऑफ द मैच मेरे हिसाब से, हाँ, बहुत अच्छी बैटिंग की थी शेफाली ने, और जिस तरह से नॉर्मली होता है, ये बैटर्स हमेशा स्पॉटलाइट में ज़्यादा रहते हैं, और जिस उसकी उनकी बैटिंग की वजह से जो स्टार्ट मिला उसकी वजह से बाकी जो नीचे जितने भी थोड़े से रन आए, हालांकि मिडल ऑर्डर थोड़ी सी लड़खड़ाई, लेकिन जो स्टार्ट मिला शेफाली की बैटिंग से, और सिर्फ इस मैच में नहीं बल्कि पूरे टूर्नामेंट में जिस तरह से उनकी बैटिंग रही है, तो मुझे लगता है कि प्लेयर ऑफ द मैच जरूर बनती है वो। श्री चरनी को भी देखा जा सकता है, क्योंकि चार विकेट फाइनल में आके लेना, और जिसमें आपका पूरा मिडिल ऑर्डर एक तरह से आपने उनका खत्म किया है, जो इस पूरे टूर्नामेंट में लगातार श्रीलंका की ताकत रही है, उनके ऊपर के बल्लेबाज फेल हों तो भी तीन चार जब ऊपर के निकल जाते हैं तो उनके पांचवें छठे सातवें आठवें नंबर के खिलाड़ियों ने ही रन बनाए हैं लगातार, उस पॉइंट पे आके उनको वो ना स्पेस देना और वो चार विकेट लेके एक तरह से उनकी पूरी मिडिल ऑर्डर को तोड़ना, इन दोनों में से किसी को भी मिल सकता है। और जहां तक प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात है, तो अगेन शेफाली और दीप्ति में से मुझे नहीं लगता दोनों में से किसी को भी कोई तकलीफ होगी अगर किसी को भी मिले इन दोनों में से तो।
0: जी, श्री चरणी ने आज 38 विकेट अपने पूरे किए हैं 2026 में, और किसी भी कैलेंडर ईयर में भारतीय स्पिनर द्वारा लिए गए ये सबसे ज़्यादा विकेट है। और लतिका, लगातार बात होती आई है एक लंबे अरसे से कि आपके पास बेंच पर राधा यादव हैं, जो ना ही सिर्फ इन्हीं की तरह लेफ्ट आर्म स्पिन डालती हैं बल्कि एक बेहतर बल्लेबाज भी है, बेहतर फील्डर भी है, फिर भी भारतीय टीम हमेशा चरनी को प्रेफरेंस देती आई है और उन्होंने डिलीवर किया भी है। मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा हमें समझाएं कि ऐसा क्या है चरनी की गेंदबाजी में।

0: जो उनको सेपरेट करता है अपने कंपटीशन से?
1: देखिए चर्नी जिस तरीके से गेंदबाजी करती हैं, पेस वेरिएट करती हैं, लाइन और लेंथ का इस्तेमाल करती हैं, वो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि बल्लेबाजों को काफ़ी परेशान करता है। और जिस जो फील्ड सेट वो करती हैं, जिस तरफ फील्ड लगाती हैं उसी तरफ गेंद आप देखिएगा कि वहीं वो गेंद जाती है। अगर राधा यादव की बात करूँ, गेंदबाजी उन्होंने भी बहुत अच्छी की है जब भी उन्होंने मैच खेले हैं, लेकिन इन दोनों में जो डिफरेंस मुझे दिखाई दिया है अभी तक, जो बॉल रिलीज होती है तो वो किस तरीके से हवा में जाती है और बल्लेबाज तक वो पहुंचती है, तो वो एक डिफरेंस है गेंदबाजी में दोनों की, कि गति गति का परिवर्तन बहुत बेहतरीन करती हैं श्रीचरणी
0: जी। और एक बड़ी खबर इस वक्त मेक्सिको से आ रही है, जैसा हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, धीरज बोमा देवरा वर्ल्ड कप फाइनल्स में, आर्चरी की बात कर रहे हैं हम, तीरंदाजी की बात कर रहे हैं, रिकर्व मेंस इंडिविजुअल इवेंट में वो गोल्ड मेडल के बेहद करीब पहुंच चुके थे, और अब खबर आ रही है कि वो गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, जापान के नाकानिशी को उन्होंने फाइनल में हराया है और आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल में भारत को गोल्ड जिताया है। तो आप भारतीय स्पोर्ट्स के अगर आप फैन हैं तो आपके पास एक और रीजन है सेलिब्रेट करने का, एक और वजह है आपके पास जश्न मनाने की, क्यों मुद्दता?
2: बिल्कुल है, और जश्न मनना चाहिए, चलता रहना चाहिए ये जश्न, और अब आने वाले एशियन गेम्स में भी हमें लगता है ये जश्न जारी रहेगा। चरणी की बात हम कर रहे थे लतिका अभी, तो चरणी टुक हर 50th T20 इंटरनेशनल विकेट इन सेमीफाइनल अगेंस्ट बांग्लादेश, और फास्टेस्ट इंडियन बॉलर बनी है वो मेन या वेमेन में टू गेट देयर। 39 T20 विकेट्स ले चुकी हैं इस साल, और इसके साथ ही हमारे साथ फिर से एक कॉलर जुड़ गए हैं। आज बहुत सारे सवाल हैं हमारे श्रोताओं के पास, तो नमस्कार, अपना नाम बताएं और साथ ही अपना सवाल पूछें। गुड इवनिंग, जी प्रकाश जी स्वागत है आपका, सवाल पूछें अपना। आपको भी हम सब की तरफ से
0: जी, ये खुशियां मैं नहीं दे रहा, ये भारत के खिलाड़ी दे रहे हैं, बहुत बहुत बधाई आपको भी। जी पूछिए। जी उतरा हम चाहेंगे, आप हेड ऑन लेते हैं चीज़ों को, इस सवाल को भी आप हेड ऑन लें। हम बात कर रहे थे कि हमें कैसे एशिया से बाहर निकलना है, कुएं का मेंढक नहीं बनना है, और बेहतर बनना है, विश्व स्तर पर ऐसा बनना है कि कोई भी टीम हमसे कम्पीट ना कर सके, तो ये छोटी छोटी गलतियां जो हो रही हैं इस पर हम कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं?
3: देखिए बिल्कुल, और जैसे लतिका ने कहा, जो प्रेमा की बॉल पर लगातार एक ही ओवर में 2 या 3 कैच ड्रॉप हुए हैं, तो वो किसी भी खिलाड़ी को भी डीमोटिवेट के लिए काफ़ी होता है। और हालांकि जिस टाइम पे वो कैचेस ड्रॉप हुए उससे रिजल्ट पे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा था, तो आपको भारतीय खिलाड़ी भी थोड़े से हंसते मुस्कुराते नज़र आए, उन्होंने उसको बहुत सीरियसली नहीं लिया। लेकिन अगर उस वक्त टोटल 107/8 की जगह 177/8 होता तो शायद चीज़ें बिल्कुल अलग हो जाती, क्योंकि तब आपके पास करीब डेढ़ ओवर में आपको सिर्फ 5 या 6 रन बनाने रह गए थे या 8 रन बनाने थे, तो सिचुएशन शायद बिल्कुल अलग हो जाती। मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस पे काम करने की बिल्कुल ज़रूरत है, फील्डिंग पे काम करने की ज़रूरत है। हालांकि आज बहुत ही 2 एक्सट्रीम्स पे थे भारतीय फील्डिंग, कुछ तो इतने कमाल के इन्होंने कैचेस लिए जो शायद किसी भी हॉल ऑफ फेम में जा सकते हैं, और कुछ ऐसे कैचेस थे जो 10 में से शायद 9 बारी ये लोग नींद में भी ले सकते थे और आज ड्रॉप हुई हैं कैचेस। तो वो कंसिस्टेंसी लानी बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ साथ

0: जो एक चीज़ ऑस्ट्रेलिया या इवन इंग्लैंड जैसी टीमों को अलग बनाती है या थोड़ा बेहतर बनाती है, वो मुझे हमेशा से लगता है कि जो एक किलर इंस्टिंक्ट होता है, एक किलिंग स्पिरिट होती है, कि आप के पास बिल्कुल, आपके पास 70-72 रन का अभी कुशन है, आपको पता है कि अगले 6 गेंदों में या 2 विकेट जरूर गिर सकते हैं लेकिन 70 रन नहीं बन सकते, पर आपको उस स्टेज पे क्यों जाके लगता है कि यहाँ पे हम ये अफोर्ड कर सकते हैं कि हाँ दो चार कैच ड्रॉप हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता रिजल्ट पे, वो 18.3 ओवर में क्यों नहीं खत्म हो सकता? क्योंकि उस चीज से ओवरऑल आपके रन रेट पे फर्क पड़ता है, जो गेंदबाज है उसकी इकोनॉमी रेट पे फर्क पड़ रहा है, उसमें आपकी टीम की सीरियसनेस नजर आती है उससे। और जब आप बड़े खिलाड़ियों के साथ बड़े लेवल पे खेलते हैं तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको हर्ट करती हैं, और हमने लगातार देखा है कि इन छोटी छोटी चीजों से ही भारतीय टीम ने कई बारी विश्व स्तर पे अपने मैचेस हारे हैं बड़ी टीमों के साथ। तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा कंसिस्टेंसी लाना, थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म लाना, थोड़ा सा वो किलर इंस्टिंक्ट लाना कि किसी भी पॉइंट पे आपको गेम को खत्म जितनी जल्दी कर सकते हैं उतनी जल्दी खत्म किया जाए, 20वें ओवर तक, 120वीं गेंद तक लेके जाने का उसका कोई मतलब नहीं है आपका। तो वो चीज मुझे लगता है कि वाकई थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, वो तभी आएगा जब आप सीरियसली, जब आप थोड़ा सा और प्रोफेशनल होंगे, थोड़ा सा और सीरियस होंगे इस चीज को लेके।
1: जी बिल्कुल, वो किलर इंस्टिंक्ट और वो विनिंग माइंडसेट बिल्कुल चाहिए। लतिका, फिर से बात की उत्तराने प्रेमा रावत की, श्रियंका पाकी की इंजरी के बाद सीधे वर्ल्ड कप में डेब्यू हुआ था और उसके बाद अब एशिया कप, पिछले 4 मैचेस में 6 विकेट, आज फाइनल में खाता खोला है उन्होंने, हाउ वुड यू रेट हर परफॉर्मेंस?
2: देखिए, मैच के बाद मैच में वो इंप्रूव करती नजर आई है, और इस एशिया कप में एक खास बात ये देखने को मिली है उनकी गेंदबाजी में जो कि वर्ल्ड कप में थोड़ा सा मिसिंग थी। अगर वर्ल्ड कप की बात करें तो वहां पर लाइन लेंथ इतनी प्रॉपर नहीं थी, इतने अच्छे से गिर नहीं रहा था, लेकिन इस एशिया कप में उनके हाथ से बहुत ही अच्छा गेंद जो है सीम से निकल रहा है, अच्छा टप्पे पे गिर रहा है, अच्छी लाइन जो है उनकी पड़ रही है और अच्छा वहां से स्पिन भी करा पा रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज है गेंदबाज में, जब वो एक मैच में इंप्रूवमेंट करता हुआ आ रहा है। अब विकेट टेकिंग की बात करें उनकी, तो विकेट टेकिंग एबिलिटीज हैं और वो हर मैच में दिखा भी रही हैं। आज अनफॉर्चुनेटली उनके कैचेस पकड़े नहीं गए, अदरवाइज ये एक की जगह 2 या 3 यहाँ पर विकेट होते। तो मुझे ये लगता है कि अच्छा काम वो अपनी गेंदबाजी पे कर रही हैं और जिसका असर हमें मैचेस में दिख रहा है कि विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रही हैं और बहुत ही सटीक और डिसिप्लिन जो गेंदबाजी है उनकी तरफ से हो रही है। और वही है कि किस तरीके से हम कहते हैं ना बॉलिंग में लूप का इस्तेमाल कैसे करते हैं, वो बहुत बेहतरीन कर रही हैं एज ए लेग स्पिनर।
3: अच्छा, स्पिनर्स की तो बात हम करने ही वाले हैं, होनी भी चाहिए, और दुबई में क्योंकि ये टूर्नामेंट था इसलिए स्पिनर्स बहुचर्चित रहेंगे, ये तो हमें मालूम था। लेकिन वो जो 2 पेसर्स हैं लतिका, क्रांति गौड़, नंदनी शर्मा, स्पॉटलाइट उन पर आ नहीं रहा लेकिन उनका परफॉर्मेंस भी शानदार रहा है इस टूर्नामेंट में। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ अपने दर्शकों को हम बताएं अपने लिसनर्स को उन दोनों के बारे में कि क्या है जो आपने आकलन किया उनको इस टूर्नामेंट में खेलते हुए देखते हुए, उनके परफॉर्मेंस को आप कैसे रेट करते हैं?
2: देखिए, काफ़ी इम्प्रूव्ड गेंदबाजी, मैं ये कहूँगी कि विश्व कप के बाद से सभी गेंदबाजों में इम्प्रूवमेंट नज़र आई है, खासकर हमारी पेस अटैक पे, क्योंकि हम काफ़ी थोड़ा निराश थे कि वहाँ पर हमारी गेंदबाजी इतनी बेहतर तरीके से हो नहीं पाई। क्रांति गौड़ की बात करें तो उनकी लाइन और लेंथ पे अच्छा काम किया है, विकेट टू विकेट वो गेंदबाजी यहाँ कर रही हैं, पहले काफ़ी शॉर्ट गेंदबाजी वो करती थी लेकिन अब उन्होंने बल्लेबाज के हिसाब से गेंदबाजी की है, अपनी लाइन लेंथ पे काम किया है। वहीं अगर नंदनी की बात करें तो हमने देखा है कि WPL में किस तरीके गेंदबाजी करती थी और अब थोड़ा सा एक्शन, थोड़ा सा मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बदलाव जरूर किए हैं, और उसकी वजह से जो एक विकेट टू विकेट गेंदबाजी हम ज्यादा उनकी गेंदबाजी में देख रहे हैं, हमें पता है कि इन स्विंग अंदर की तरफ आती हुई गेंद वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से डालती हैं, तो कंसिस्टेंसी इस टूर्नामेंट में हमारे
3: लोअर बॉल डालती है बैक ऑफ द हैंड
2: वो परफेक्ट है उनकी नंदनी की। मैंने बहुत कम बॉलर्स देखे हैं जो इतने परफेक्शन से वो गेंद डालते हैं और उन पे उनको विकेट भी मिलती है, पिछले मैच में हमने देखा लास्ट बॉल में उन्होंने कैसे विकेट लिया था।
1: लतिका, हर प्लेयर का जिस तरह आप एनालिसिस कर रही हैं तो आपका पिक कौन होगा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए और प्लेयर ऑफ द मैच के लिए?
2: देखिए, प्लेयर ऑफ द मैच बिल्कुल जिस तरह गेंदबाजी श्री चन्नी ने यहाँ पे की है, कि यंगस्टर्स हैं उभरते

0: ये इसीलिए मिलना चाहिए क्योंकि जब कोई यंगस्टर इस तरह गेंदबाजी इस टूर्नामेंट में करता है तो एक कॉन्फिडेंस लेवल उसका अलग होता है, और उन्होंने अपनी काबिलियत भी दिखाई, अपने स्टैंडर्ड भी सेट किए हैं कि वो किस लेवल की गेंदबाज हैं, और चाहे हम किसी भी बैटर को उनके सामने ले आते, घबराती नहीं है बॉल को डालते टाइम, और जो रिटर्न कैचेस वो पकड़ रहे हैं आजकल, मतलब कह सकते हैं कि हवा में होते हैं वो पूरे, और उसके बाद तो एक ये भी देखने को मिलता है कि फिटनेस पे भी वो अच्छा काम कर रही हैं। तो ये देखते हुए अच्छा लगता है कि कोई यंगस्टर इस तरीके से आपकी टीम में कॉन्ट्रीब्यूट करता है। और वुमन ऑफ द मैच तो मैं कहूँगी कि एक गेंदबाज को, मैम से भी मैं एग्री करूँगी कि गेंदबाज को मिलना चाहिए, क्योंकि बैटिंग डोमिनेटिंग ये गेम बनता जा रहा है, तो जहाँ वहाँ बॉलर अगर 4 विकेट ले रहा है उसका ये मतलब, और एक मेडन भी डाला है उन्होंने, तो इसका ये मतलब है कि कितनी बेहतरीन उन्होंने गेंदबाजी की होगी। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मुझे लगता है कि शेफाली या दीप्ति, क्योंकि दीप्ति एक ऑलराउंडर हैं, अच्छी गेंदबाजी भी करती हैं, समय आने पर अच्छी बल्लेबाजी भी वहाँ करती हैं, और शेफाली के इसलिए क्योंकि इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है कि जब इनिंग की शुरुआत करनी होती है वहाँ पर भी एक प्रेशर होता है, जब चाहे आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हो या आप चेज करते हुए बल्लेबाजी करने हैं, तो वो एक अहम समय होता है वहाँ पर एज अ ओपनर कि आप शुरुआती दौर में वो ओवर्स कैसे निकालते हैं, क्योंकि शॉर्टर फॉर्मेट में आपका रन रेट अच्छा होना चाहिए अगर आप दूसरी टीम पर प्रेशर डालें। तो दोनों ही अपनी तरफ से एक, मैं कहूँगी मेरी तरफ से तो ये नजर आता है, तो अब देखते हैं फाइनली किसको मिलता है।
1: चलिए, कठिन निर्णय है, लेकिन हमारे कॉलर्स की क्या राय है वो हम जानना चाहेंगे। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बात करते हैं। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं? जी नमस्कार, अपना नाम बताएं। जी कहां से बात कर रहे हैं आप? जी सवाल पूछिए अपना। जी और कुछ कहना चाहेंगे? चलिए कोई बात नहीं, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी खुशी जाहिर की है, उसी से हम बहुत खुश हैं। पुत्रा, वी हैव टॉक्ड अबाउट ऑल द प्लेयर्स, बट देयर इज वन प्लेयर हु वी हैवंट डिस्कस्ड इन लेंथ, स्मृति मानधना। वी टॉक्ड इन द प्री शो दैट एट टाइम्स यू नो दे से दैट शी डजंट डिलीवर एट द बिग स्टेजेस, ये उन पर एक लालचन लगाया जाता था फैंस द्वारा। आज 150 के स्ट्राइक रेट से अर्धशतक बनाया है, रन आउट हो गई जरूर, बदकिस्मत रही, लेकिन आज कमाल की पारी खेलकर वो नींव उन्होंने रखी बड़े स्कोर की।
2: देखिए मुझे लगता है कि हमारे देश में सिर्फ फैंस नहीं, इन जनरल हमारे देश में लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं और वो अक्सर एक्सट्रीम्स पे ज़्यादा जाते हैं। तो जो लोग ये कह रहे होंगे इतने वक्त से कि स्मृति मानधना बड़े स्टेज पे नहीं परफॉर्म करती, या वो नहीं अपने रन्स बना पाती, या वो बड़ी टीमों के साथ नहीं खेल पाती, वही लोग आज शायद सबसे बड़े फैंस होंगे स्मृति के, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से आज पारी खेली है और जिस तरह से जो ओपनिंग पार्टनरशिप तैयार की है, और उसके बाद जब हरमनप्रीत के साथ वो मिसकम्युनिकेशन हुई तो वो बहुत आसानी से अपनी जगह पर खड़ी रह सकती थी और हरमन आउट होके जा सकती थी, तो उन्होंने अपना एक सेट बैट्समैन होते हुए, एक अच्छा स्टार्ट लेते हुए, एक बहुत सधी हुई बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने जो अपना विकेट सैक्रिफाइस किया है एक तरह से टीम के लिए, तो जैसे मैंने कहा कि वही लोग शायद इस वक्त उनको सबसे बड़ा हीरो भी मान रहे होंगे। तो हमारे देश में फैंस की एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा होती हैं कि वो किसी भी तरह की कोताही को उनको लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, और स्मृति जितनी बड़ी खिलाड़ी हैं उनसे हर बारी ये उम्मीद होती है कि वो एक मैच विनिंग इनिंग्स खेलेंगी, वो किसी भी फॉर्मेट में हो, तो जब वो नहीं प्रदर्शन कर पाती तो लोगों के लिए ये एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि वो भी इंसान है और इंसान का खराब फॉर्म आ सकता है, इंसान खराब खेल सकता है, और जानबूझ के कोई भी खिलाड़ी खेलने के लिए नहीं उतरता कि आज मेरा मन नहीं है तो आज मैं खराब खेलूंगा। तो फैंस का ओपिनियन सर आंखों पर स्मृति जितनी बड़ी खिलाड़ी हैं, बहुत लंबा समय उनका कभी जाता नहीं है कि उनका फॉर्म खराब हो या रन ना आए। इस पूरे टूर्नामेंट में पहला एक हांगकांग वाला मैच छोड़ के उनके उस तरह से रन्स नहीं आए थे, तो शी वॉज ड्यू फॉर अ बिग स्कोर, एंड अगर वो आज रनआउट पे अपना विकेट नहीं छोड़ती तो शायद शी कुड हैव बीन द टॉप स्कोरर ऑल्सो द वे शी वॉज बैटिंग। तो

0: playing for the team and playing the way she does and the kind of player she is, emotions apni jagah pe hain, but there can be no questions on the credibility and her credentials.
1: जी बिल्कुल, स्मृति मानना के क्रेडेंशियल्स पे कोई शक नहीं है और हमारे कॉलर्स आज फिर बहुत उत्साहित हैं दर्पण. तो एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं. जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछें और अपना नाम बताएं. जी
2: आपको एक बात बता दे जनाब कि जो भारत ने पहला एशिया कप टाइटल जीता था वो 2004 में ही जीता था, तो शायद भारतीय टीम के लकी चाम आप ही हैं. सुनते रहिए आकाशवाणी, हमारे साथ जुड़ते रहिए. आप जैसे श्रोता जब हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमारा हौसला भी बढ़ता है, हमारी प्रोडक्शन टीम जो मेहनत करती है इस कॉमेंट्री को प्रोड्यूस करने में उनका भी हौसला बढ़ता है. बहुत बहुत बधाई आपको और पूरे भारतवर्ष को.
1: जी जी, आपके जैसे श्रोता हमारे लिए बहुत कीमती हैं. आपका फोन कॉल, आपकी हर ओपिनियन, हर राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है. दर्पण, एक और वोट आ गया है श्री चरणी के लिए, क्या आपका वोट भी चरणी के लिए ही है?
2: देखिए अब प्लेयर ऑफ द मैच कोई भी बने, मुद्दा यह है कि ट्रॉफी भारत के पास आ रही है और उससे हम बहुत खुश हैं. पुरुष क्रिकेट में भी भारत एशिया कप का चैंपियन पिछले साल बना था. इस बार महिलाओं ने भी जो 2024 में जो हार मिली थी श्रीलंका के खिलाफ, कहीं ना कहीं उसको पीछे छोड़ा है. लेकिन अब एक थोड़े लार्जर पर्सपेक्टिव के बारे में मैं बात करना चाहूँगा. लतिका, हमने देखा, ठीक है भारत को हमने देखा, पाकिस्तान को देखा, श्रीलंका को देखा, बांग्लादेश को देखा, लेकिन इस टूर्नामेंट में हमने इंडोनेशिया की भी भागीदारी देखी, थाईलैंड की भी भागीदारी देखी, हांगकांग की भी भागीदारी देखी. तो वर्ल्ड क्रिकेट की जो ग्लोबलाइजेशन है, जो हर एक क्रिकेट फैन चाहता है कि विश्व भर में ये खेल खेला जाए, उस लिहाज से आप इस टूर्नामेंट को कैसे देखते हैं?
3: देखिए मैं यही बोलूंगी कि बहुत अच्छा लगता है ये सुन के भी और देख के भी कि बाकी के जो कंट्रीज हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं. और क्यों ना हो, क्योंकि ये जो स्पोर्ट है ये काफ़ी अच्छे लेवल पे चल भी रहा है. भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ WPL स्टार्ट हो गया है, कैरेबियन लीग स्टार्ट हो गई है, इंग्लैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में है, तो हर जगह पर ये जो लीग्स हैं इससे एक उत्साह बनता है. जो बच्चे देख रहे हैं, यंगस्टर्स देख रहे हैं, और वही तो अगली पीढ़ी है इस गेम को आगे बढ़ाने के लिए. तो मुझे लगता है कि एक सबसे बड़ा रीज़न है कि जितना ये टेलीकास्ट हो रहा है टीवी पे या जितना ये सोशल मीडिया में आ रहा है, उसकी वजह से जो है लोग क्रिकेटर्स को जान रहे हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री के हों. तो इस वही एक रीज़न मुझे ऐसा लगता है बड़ा कि जो यंगस्टर्स हैं इस गेम को फॉलो कर रहे हैं, खासकर लड़कियां इस गेम को फॉलो कर रही हैं, और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में हैं जो हमें टीम बनती हुई नज़र आ रही है, और इस तरह के जो कॉम्पिटिशन्स हैं उसमें हम उनका पार्टिसिपेशन भी देख रहे हैं.
1: जी एसोसिएट नेशंस की बात हम कर रहे हैं उत्तरा, तो आपको किसकी परफॉर्मेंस ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया इस टूर्नामेंट में?
0: ये काफ़ी टीमें हैं, और जब हम एसोसिएट की बात करते हैं तो जिस तरह से चीज़ें फैल रही हैं, तो हांगकांग में काफ़ी लोग खेल रहे हैं, थाईलैंड में क्रिकेट अभी से नहीं है, बहुत से लोगों को शायद नहीं आइडिया होगा कि थाईलैंड में काफ़ी सालों से क्रिकेट खेली जा रही है, और थाईलैंड काफ़ी पहले से एसोसिएट नेशन है.
1: शायद यही राज है इस टूर्नामेंट में उनकी परफॉर्मेंस का.
0: बिल्कुल, और मुझे लगता है कि इन टीमों को आपस में और ज़्यादा खेलना चाहिए, और जितना हो सके हमें सपोर्ट भी करना चाहिए, क्योंकि भारतीय क्रिकेट जिस लेवल पे है वो ऑब्वियसली विश्व स्तरीय है, पर जब आप अपने आसपास के, जिसे कहते हैं ना कि जब पड़ोस मजबूत होगा तो आपकी अपनी ताकत बढ़ती है. तो एशिया में क्रिकेट जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, जितनी ज़्यादा टीमें अच्छा खेलेंगी और ऊपर आएंगी, उतना ही आपका खुद का कॉम्पिटिशन लेवल भी इम्प्रूव होगा.

0: और जब तक आप आपस में और ज़्यादा नहीं खेलेंगे, हालांकि बीसीसीआई काफ़ी हेल्प करती है। आज अगर इंडिया में, आज अगर दिल्ली में भारत अफगानिस्तान मैच चल रहा है, तो एक तरह से वो अफगानिस्तान का होम मैच है, वो होस्ट हैं हमारे इस सीरीज़ के, लेकिन वो दिल्ली में चल रहा है। वो अपने ट्रेनिंग कैंप भी यहीं पर लगाते हैं इंडिया में ही, तो चल रहा है काम। लेकिन मुझे लगता है कि महिला क्रिकेट में भी इस तरह की चीज़ें करने की ज़रूरत है, और जो एसोसिएट नेशंस हैं उनको यहाँ बुला के, चाहे वो डोमेस्टिक लेवल पे ही क्यों ना हो, हमारे टूर्नामेंट्स में खिलाने की ज़रूरत है। क्योंकि भारत का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इतना अच्छा है कि अगर वो अपनी नेशनल टीम्स भेजते हैं कुछ समय के लिए यहाँ पे, और यहाँ पे डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो भी उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और उनको सपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा।
1: जी, बीसीसीआई की हमेशा एक अहम भूमिका रही है। हम जानते हैं कि भारत की जो पुरुष टीम है अभी जापान के साथ भी एक T20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला आने वाले दिनों में खेलने वाली है। इस वक्त हमारे पास जो विजुअल्स आ रहे हैं, भारतीय टीम जश्न मना रही है एक हडल में, और बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवजीत साइका वहां पे मौजूद हैं, और फील्डिंग के लिए मेडल दिया जा रहा है नंदिनी शर्मा को। ये एक ऑफिशियल प्राइस तो नहीं है, लेकिन टीम अपने ड्रेसिंग रूम में सेलिब्रेट करती है बेस्ट फील्डर को, तो आज नंदिनी शर्मा को वो मेडल दिया गया है। राजीव शुक्ला भी वहां पर मौजूद हैं, और फील्डिंग कोच जो है भारतीय टीम के मुनीश बाली वो नजर आ रहे हैं, हेड कोच अमोल मौजूमदार नजर आ रहे हैं, और साथ के साथ भारत के सारे प्लेयर्स हैं। एक हडल में जश्न मनाया जा रहा है, इंतजार हालांकि किया जा रहा है ACC के जो प्रेसिडेंट है मोहसिन नकवी साहब उनका, ताकि वो आए और ट्रॉफी दें। वो प्रेजेंटेशन अभी से कुछ देर में होगी, लेकिन तब तक हम अपने श्रोताओं को कुछ रोचक आंकड़े बता दें कि 10 संस्करण एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय और T20 अंतरराष्ट्रीय मिलाकर 10 संस्करण महिलाओं के एशिया कप के खेले गए हैं, जिसमें हरमनप्रीत कौर ने चौथी बार एज अ कैप्टन ए टाइटल जीता है। इनसे पहले मिथाली राज की कप्तानी में 3 बार भारत ने टाइटल जीता था, तो 3 बार एशिया कप जीतने वाली कप्तान मिथाली राज दूसरे पायदान पर पहुंच गई हैं उस सूची में, और हरमनप्रीत कौर नंबर 1 पर आ गई हैं। लतिका, एक बार फिर हम बात कर रहे हैं कि यहां से आगे कैसे इंप्रूव करना है। 2-3 वो वीक स्पॉट्स अभी भी दिख रहे हैं, एक वो नंबर 3 की पोजिशन, आपने प्रतिका को ट्राई किया, अभी एशियन गेम्स के स्क्वाड में भी आपने उनको डाला क्योंकि जमीमा रॉड्रिग्स फिट नहीं है। आज कामलिनी को आपने खिलाया जरूर लेकिन नीचे भेजा। दूसरा वो भारती फूलमली का जो स्पॉट है नंबर 5 नंबर 6 पर, वो कहीं ना कहीं अभी पक्का नहीं हुआ है। इन दो वीक पॉइंट्स को आप आने वाले समय में आप कैसे देखते हैं इंप्रूव होते हुए?
2: देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी है ये इस चीज़ पे काम करना, क्योंकि आपकी जो ओपनिंग साझेदारी है वो बहुत ही अच्छे तरीके से अभी बल्लेबाजी कर रही है, और वन डाउन के लिए मुझे ऐसा लगता है अगर कमलिनी को आपने चेंज किया है प्रतिका रावल से, और जो आज उन्होंने सिर्फ पाँच गेंदों में वो कमाल करके दिखाया, तो उनको भी वो मौका ज़रूर मिलना चाहिए कि वहाँ पर आके वो बल्लेबाजी करें, कुछ शॉट्स खेलें, कुछ कॉन्फिडेंस उनमें भी आए आगे के मैचेस खेलने के लिए। तो वहाँ से यहाँ पे अगर इनको नंबर 3 पर लेकर आते हैं तो वो जस्टिफाई भी करेगा, क्योंकि डोमेस्टिक लेवल पे कमलिनी ओपनिंग करती हैं, तो वो एक्सपीरियंस भी उनके पास काफ़ी है, और वहाँ पर ये काफ़ी अच्छी जो है बल्लेबाजी बहुत ही अच्छी करती हैं, बड़े बड़े शॉट्स लगाती हैं, तो वो एक्सपीरियंस इनको यहाँ पर काम आएगा। यहाँ पर उन्होंने आज वो कॉन्फिडेंस भी दिखाया, पहला मैच फाइनल मैच, प्रेशर बहुत था, आपको नंबर 3 पे नहीं भेजा गया, 4 पे नहीं भेजा गया, आप वहाँ डगआउट में बैठ के वेट कर रहे हैं कि कब आपके बल्लेबाजी करने को मिलेगी, और उसके बाद जब आप बल्लेबाजी करने के लिए जाते हैं तो आपके पास एक ही मकसद होता है, रन बनाने का। तो वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो कमलिनी ने आज दिखाया है वो बहुत ही बेहतरीन है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको नंबर 3 की जो समस्या, अभी जेमिमा रॉड्रिक्स जो कि हालांकि इंजर्ड चल रही है, उनकी जगह पर खिलाएं तो बेहतर होगा, और उसके बाद हरमन आती हैं, फिर ऋचा घोष मुझे लगता है कि 15वें ओवर के आसपास आए, उसके बाद आए तो ज्यादा इंपैक्टफुल उनकी इनिंग नजर आएगी। भारती फुलमल्ली को मैं हरमनप्रीत के बाद देखती हूँ, क्योंकि उनको पूरा मौका वहां मिलेगा अपनी बल्लेबाजी करने में, क्योंकि कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि एक दो गेंद उनको लगती है समझने में देखने में, और उसके बाद वो बेहतरीन जो है बल्लेबाजी करती है। उनको हमने पहले डोमेस्टिक में भी देखा है, WPL में भी देखा है, तो ऐसा नहीं है कि वो बल्लेबाजी नहीं करती या रन नहीं बनाती, तो सही नंबर पे उनको भेजना बहुत जरूरी है।
1: तो एशियन गेम्स आने वाले हैं, वहां पर हर मुकाबला भले ही नॉकआउट है, सामने आप जापान से पहला मुकाबला खेलेंगे, आप कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने की गुंजाइश देखते हैं वहां पर, या फिर आप कहेंगे नहीं जी नॉकआउट है, एशियन गेम्स का सवाल है, हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे?
2: देखिए जिस

0: तरीके से अभी तक जो परफॉर्मेंस दिखाई है इस एशिया कप में, मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर कुछ इसी तरीके की सोच वहाँ पर मैनेजमेंट की है या कोच की है, कप्तान की है, तो एग्जीक्यूशन लाने में कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ को।
1: एग्जीक्यूशन लाने में दिक्कत नहीं है, पर उत्तरा हम देख रहे हैं स्क्वाड में और भी प्लेयर्स थे, रेणुका सिंह ठाकुर थी, कमलिनी को अभी मौका दिया गया है। क्या ये एक अच्छा मौका था कि हम उन सबको ट्राई करते अलग अलग जगहों पर, उन सबको मौका दिया जाता खेलने का, क्योंकि आने वाले टाइम में हमें चैम्पियंस ट्रॉफी में बड़ी टीमों का सामना करना है, और शायद ये एक अच्छा मौका था टीम को तैयार करने का।
2: बिल्कुल, और इसीलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के हिसाब से प्लानिंग की बहुत सख्त ज़रूरत है कि हर टूर्नामेंट आप जीतने के लिए उतरते ज़रूर हो, लेकिन हर टूर्नामेंट का मेन मकसद सिर्फ जीतना नहीं हो सकता है। आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा टूर्नामेंट्स को, कॉम्पिटिशन्स को, अपने प्लेयर्स को और उनकी उनके तैयारी को, उनकी उनके प्लान, उनके एक्सपोजर को, उनके रिहैब को अगर इंजरी या निगल्स चल रही हैं, और ये एक या हर और ये आप हर 2 महीने या हर 3 महीने में क्वार्टरली रिव्यूज़ नहीं हो सकते हैं। ये इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म प्लान करना पड़ेगा, आपको साल के हिसाब से एटलीस्ट सोच के चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप हर टूर्नामेंट में सिर्फ ये सोच के उतरेंगे कि हम चांस नहीं लेंगे, हम रिस्क नहीं लेंगे, हम पहले अपना जीत जाएं उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है, तो फिर आपके पास कभी एक्सपेरिमेंट करने या टेस्टिंग का कभी मौका मिलेगा ही नहीं आपको।
3: जी, आपको बता दें कि भारतीय टीम ने आज 72 रन से इस फाइनल मुकाबले को जीता है, और किसी भी वुमेन्स T20I के मल्टी नेशन टूर्नामेंट में ये फाइनल में आई दूसरी सबसे बड़ी जीत है। पहले नंबर पर 85 रन के मार्जिन से ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया था मेलबर्न में 2020 में। पुराने जख्म ताज़ा हो जाएंगे अगर उसकी बात करेंगे तो छोड़ देते हैं, लेकिन ये जो जीत है भारत के लिहाज से एक बड़ी उपलब्धि है। 8वीं बार भारत चैंपियन बना है एशिया का, और हम लगातार बात कर रहे हैं हम कि भारतीय जो खिलाड़ी हैं उनके प्रदर्शन की, लेकिन कप्तान को कैसे भूल सकते हैं। लतिका, हरमनप्रीत कौर भले बैटिंग वाइज थोड़ा सा ठंडा थोड़ा सा गर्म रहा उनका यह प्रदर्शन, आप उनकी कैप्टेंसी को कैसे रेट करेंगे?
0: देखिए, जिस तरह की कप्तानी वो करती हुई आ रही हैं वर्ल्ड कप से लेकर अभी तक, हमने देखा है कि बहुत ही बेहतरीन कप्तानी यहाँ पर की है।
1: हम आपको रोकना चाहेंगे, हम चलते हैं पहले सीधा फेलिसिटेशन सेरेमनी की तरफ।
4: डॉक्टर कमाली, मेंबर ECB, मिस्टर ईरान विक्रमरत्न, एग्जीक्यूटिव कोर्ट मेंबर ACC, मिस्टर मुबाशिर उस्मानी, जनरल सेक्रेटरी ECB इवेंट होस्ट, and Mr. Ibstam Ahmed Al-Kabi, Senior Vice President, Jasper Sales, DP World, representing DP World. Right, moving on, first and foremost, I'd like to invite Chamari Athapattu to come and sign the match ball.

0: and Nilaksha Silva and Chamuthi Prabodha. We have good positive things in this tournament, so we carry all these things for next series as well.
1: Certainly lots of positives. Bad luck today, but very well done throughout the tournament, and good luck in the Asian Games.
0: Thank you very much,
1: Chamari. That's Chamari Attapattu. That's it from the presentation. Back to the comms.
2: देखिए भारत के लिए सिर्फ एक ट्रॉफी की
3: तो ये थी श्रीलंकाई कप्तान चमारी अट्टापट्टू। एक ख़ास बात जो लतिका देखने को मिली कि जितना मुस्कुराते हुए उन्होंने पूरा टाइम दिखा है उनका चेहरा, और शायद खेल यही सिखाता है आपको। उन्होंने कहा भी कि वी विल बाउंस बैक, तो खेल जीतना तो सिखाते हैं आपको, लेकिन साथ ही हार में भी कैसे आप मुस्कुरा सकते हैं, कैसे आप ग्रेसफुली उस हार को एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो भी आज दिखाया अट्टापट्टू ने।
4: बिल्कुल, और देखिए हर टीम किसी भी टूर्नामेंट में शिरकत करती है तो सिर्फ जीतने के लिए ही करती है, और उस टूर्नामेंट को खेलते हुए पार्टिसिपेट जब वो करती है, दूसरे टीमों के साथ कंपटीशन होता है, तो वहाँ कुछ चीज़ें रह जाती हैं जिन पे हमारी नज़र नहीं गई होती, और वो जब नज़र जाती है तो उसकी प्रिपरेशन हम करना चाहते हैं। तो कई बार इस तैयारी में और इस प्रोसेस में कप जो है हमसे थोड़ा सा दूर हो जाता है, तो जब हम नए किसी कंपटीशन की तैयारी, तो उन कमियों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट की हो, बॉलिंग की हो, फील्डिंग की हो, बल्लेबाजी की हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर टीम, चाहे वो भारतीय टीम हो, श्रीलंकन टीम हो, चाहे एशियन की और कोई भी टीम हो, यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर सीख के गए होंगे, और भारतीय टीम ने कप जीता है, लेकिन एशियन गेम्स को किस तरीके से लेते हैं, वहाँ क्या प्लान्स होंगे, उनके पास भी बहुत सारे सवाल होंगे जिनका वो जो है जवाब ढूंढ रहे होंगे।
5: जी, तो चामरी अट्टापट्टू ने कहा कि वी विल बाउंस बैक इन दी एशियन गेम्स। जी हाँ, एशियन गेम्स पर अब नजर होने वाली है, जहां पर क्रिकेट तो हिस्सा होने ही वाला है, साथ के साथ करीब 36 खेलों में भारत के अलग अलग खिलाड़ी शिरकत करते हुए नजर आएंगे, और आकाशवाणी के जरिए हम सब साक्षी बनेंगे। उम्मीद करते हैं कि इस बार भी जो मेडल्स का आंकड़ा है वो ट्रिपल फिगर्स में जाएगा। भारतीय टीम ने वुमेन्स एशिया क्रिकेट कप 2026 को अपने नाम किया, और आपने सुना आकाशवाणी पे सीधा प्रसारण इसका, और इसके बाद जैसा हम कह रहे हैं अब नजरें होने वाली है एशियन गेम्स पर।
3: बिल्कुल, और एशियन गेम्स का फॉर्मेट थोड़ा अलग है क्योंकि वहाँ सीधे क्वार्टर फाइनल मुकाबले होंगे। 17 तारीख को पाकिस्तान और थाईलैंड के बीच होगा, और दूसरा मुकाबला उसी दिन होगा बांग्लादेश और चाइना के बीच। वहीं 18 सितंबर को इंडिया का सामना होगा जापान से, और श्रीलंका मुकाबला करेगा मलेशिया से। इसके बाद इन क्वार्टर फाइनल्स के जो विजेता होंगे वो सेमीफाइनल में भिड़ेंगे 20 सितंबर को, और ब्रॉन्ज मेडल और गोल्ड मेडल मैचेस होंगे 22 सितंबर को। तो उसके लिए हमारी तैयारी स्क्वाड अनाउंस हो चुके हैं उत्तरा, उसमें कोई खास कमेंट आपका उस स्क्वाड पे, क्योंकि लगभग वही नाम है जो अभी एशिया कप में हमें दिख रहे थे।
6: मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा फेरबदल करेंगे भी, और क्योंकि यही टीमें आपको फिर से वहाँ पे मिलने वाली हैं, और कुल मिला के 2 या 3 मैक्सिमम अगर आप फाइनल खेलते हैं तो मैचेस हैं, 3 मैच के लिए आप क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल फाइनल में बहुत ज़्यादा चेंजेस करेंगे नहीं, और करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर ये करना चाहते तो किसी यंगस्टर को ज़रूर चांस दे सकते थे, जैसा हम इस टूर्नामेंट के लिए भी लगातार बोल रहे हैं, पर अब जब स्क्वाड अनाउंस हो चुका है तो उसमें बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस करने की गुंजाइश नहीं है। पर उम्मीद यही है कि वहाँ पे भी गोल्ड मेडल आएगा, क्योंकि जो जैसा मैंने पहले भी कहा था कि जितना बड़ा गैप है भारतीय टीम और बाकी टीमों के बीच में, तो गोल्ड से कम जो होगा वो एक तरह से आपके लिए हार के बराबर ही होगा।
5: जी, why fix what is not broken? तो उस स्क्वाड पर तो हमारी नजर रहेगी, लेकिन एक स्क्वाड यहां पर भी रहा जिसने आप तक ये प्रसारण पहुंचाया, उसका धन्यवाद करना बहुत बहुत जरूरी है। उत्तरा, लतिका, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने एक्सपर्ट कमेंट्स देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
4: थैंक यू सो मच।
5: और मेरी को एंकर मुदिता को भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने संचालन करने में मदद की। थैंक यू सो मच मुदिता।
3: शुक्रिया दर्पण।
5: और बिहाइंड द सीन्स हमारी टीम जो बहुत मेहनत करती है, टेक्निकल टीम जयराम, मनोज सिंह, त्रिलोक गुप्ता, रामाशीष यादव का बहुत बहुत शुक्रिया, साथ के साथ हमारे प्रोडक्शन क्रू का बहुत बहुत शुक्रिया, जिसमें आज थे माधव।